पाए बरकाह मुलाई तन्नर ताहु तो जो सातु आया की भूम उगलों की जो डोका मुड़ मुड़ की तवन मांगो काओ